ये आज ये ती जेल इन आज ये ता अन्हे की आर तत ए ये ती खा खुद ए आज ती ए मेर को ए ता ना ए आज इन दोल किस की ए या आज तो आज उन्स को ए ती ला दाई पीरीज दो ने ए आज बिदे ते गो ए ला हिल्च इन आ दो ले आर ख्या आर इस निल्च आ दे गी आर जन ना उल की दिगी Korean Shish Jaro K3B 89.7 FM Donanit Aroyed Okorogone Nan Kildish Nil